ॐ खज्जोताय नमः, ॐ लोलिताखिल दैत्याय नमः, ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः, ॐ अपवर्गप्रदाय नमः, ॐ आर्यशरण्याय